0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से जबकि 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। और खेलों में इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। महिला डबल्स के फाइनल में आज गुओ हान्यो और लुइसा स्टेफेनी की जोड़ी का मुकाबला क्रिस्टीना माल्डिनोविच और ग्रेबेलिया डाब्रोवस्की की जोड़ी से होगा। यह मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic two-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over four decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Mr. Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of five memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management, dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है. भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है. हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है. हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है. पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे.
1: Vietnamese Prime Minister Le Minh Hanh has ordered a probe into the speedboat tragedy near Phu Quoc Island that claimed the lives of 15 Indian tourists. According to a statement issued by Consulate General of Vietnam in Mumbai, Prime Minister Hanh asked authorities to identify shortcomings, determine causes of the accident and implement corrective measures to prevent similar incidents in the future. The Vietnamese Prime Minister also directed authorities to take strict legal action against anyone found to have violated regulations that may have caused the accident. The tragic incident occurred yesterday when a speedboat carrying 36 people, including four crew members, flipped after reportedly being hit by a sudden wave off Root Nguai Islet. While local authorities managed to rescue 21 people, 15 Indians, including two women, were dead. The United States launched a new round of strikes against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC forces attacked a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. The U.S. military said the strikes were carried out at the direction of President Donald Trump. U.S. CENTCOM said the attack on the commercial vessel left a civilian crew member missing and the vessel is unable to continue the journey due to an onboard fire and significant engine room damage. Explosions were heard in Keshm Island, Bandar Abbas and Sirik following the attacks. Meanwhile, Iran has closed Strait of Hormuz until further notice. The announcement came after the IRGC claimed it fired a warning shot and stopped the vessel. Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, has issued 9 notices to food business operator Swiggy Instamart following multiple consumer complaints alleging violations under the Food Safety and Standards Act 2006. In a social media post, FSSAI said that the food business operator has been directed to submit a detailed explanation and compliance report, failing which legal action will be initiated. Consumer complaints allege the supply of expired, spoiled, rotten, contaminated and otherwise unsafe food products through Swiggy Instamart. The food regulator's notice

सुबह की शुरुआत आपके साथ सुन रहे हैं सुहानी सुबह हंड्रेड पॉइंट वन एफ एम गोल्ड पर।

सुप्रभात, नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऐसा है दोस्तों कि आज है 12 जुलाई 2026 और आपने ट्यून कर रखा है खरा सोना वाला चैनल। कहते हैं कि सुबह की शुरुआत सुहानी सुबह के साथ, और इस सुहानी सुबह कार्यक्रम में आपके साथ रहेगी आपकी रेडियो दोस्त सुलक्षणा पर्वत। सुबह के 8 बजे तक, यानी कि 7 से 8 हम रहेंगे साथ साथ।

इस प्रार्थना रूपी गीत को आपने सुना वाणी जयराम और साथियों की आवाज में फिल्म गुड्डी से। कलमबद्ध किया है इस प्यारे से गीत को गुलजार ने और संगीतबद्ध किया है वसंत साई ने। सूरज की किरणें आती हैं, सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, जब सब जग जो है सुंदर हो जाता है। चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। ये प्रातः की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है, नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी।

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
2: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
3: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
4: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

ऐसा है दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे कई साथी होते हैं जो ठीक सुबह 7 बजे जो है ट्यून नहीं कर पाते हैं खरा सोना वाला चैनल यानी कि 100.1 एफएम गोल्ड आकाशवाणी कोलकाता का एफएम गोल्ड चैनल। तो ऐसा है कि अगर आपने 10 मिनट देर से भी ट्यून किया है तो कोई बात नहीं, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ उस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुहानी सुबह और मैं हूँ आपकी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत। ऐसा है दोस्तों कि ये बिल्कुल सही है कि जल है तो हम हैं, जल है तो कल है।

0: अब ये मत कहिएगा कि इस गीत को सुनते सुनते आपने गुनगुनाया नहीं। हो ही नहीं सकता कि आप गीत गाता चलकर टाइटल ट्रैक सुने और बिना गुनगुनाए रह जाएं। यही तो खासियत है इस गीत की और बहुत गहरी संदेश भी है इस गाने में। तो ये संदेश आप तक तो पहुंच ही गया है, अब चलिए आगे पहुंचाती हूँ आपको। क्या अजी, आज कोलकाता के लिए जो लोकल फोरकास्ट है वो अगले 24 घंटे के लिए वैलिड है। तारीख आज 12/7/2026। आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 32 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस, सामान्य से -0.7 डिग्री सेल्सियस कम, और न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस, सामान्य से +1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा। अधिकतम आर्द्रता 98%, न्यूनतम आर्द्रता 78%। और अब अगला गाना आप सभी के लिए, मौसम का जादू।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

ऐसा है दोस्तों कि स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:23 और आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी कोलकाता का 100.1 FM गोल्ड और सुन रहे हैं आपका ही पसंदीदा मॉर्निंग शो सुहानी सुबह अपनी आज फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत के साथ। और ऐसा है ना, दिन संडे का हो, सुबह का बेला हो, मतलब सुबह का टाइम हो, तो कहीं ना कहीं अंगड़ाई लेते हुए मतलब एक बड़ी खुशी वाली फीलिंग आती है, फील गुड वाला एहसास होता है, छुट्टी का दिन है तो चलो ये बात तो आती होगी दिमाग में। अजी वो कौन सी बात है, चलिए मैं बताऊं क्या, अगले गीत में ही सुन लो।

12 जुलाई का दिन विश्व और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस तारीख की सबसे प्रमुख घटनाओं में वर्ष 2012 में पाकिस्तान के मानव अधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफाई का जन्म शामिल है, जिनके जन्मदिन को विश्व स्तर पर मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जुलाई से जुड़ी कुछ अन्य प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं पर भी नजर डालना चाहूंगी। 1949 भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर लगाए गए प्रतिबंध को कुछ शर्तों के साथ हटा दिया गया था। 1962 में अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा प्रक्षेपित संचार उपग्रह टेलस्टार के माध्यम से पहला ट्रांस अटलांटिक टेलीविजन लाइव प्रसारण किया गया। 1998 में आज के दिन 12 जुलाई को फ्रांस ने ब्राजील को 3-1 से हराकर पहली बार फीफा विश्व कप का खिताब जीता था। 2015 12 जुलाई नासा के न्यू हाइड्रोजन्स अंतरिक्ष यान ने पहली बार प्लूटो ग्रह के सबसे करीब पहुंचकर बेहद स्पष्ट तस्वीरें ली थी। और अब अगला गीत साधना सरगम और नितिन मुकेश की आवाज में, फिल्म खून भरी मांग से, हंसते हंसते कट जाए रस्ते।

12 जुलाई को प्रसिद्ध हस्तियां जिनका निधन हुआ। 1999 में 12 जुलाई को हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता, जिन्हें जुबली कुमार के नाम से जानते थे हम सब और आज भी जानते हैं, राजेंद्र कुमार का निधन हुआ था। 2012 में 12 जुलाई मशहूर पहलवान और अभिनेता दारा सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कहा। 2013 में हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता प्राण का निधन हुआ था। और इसी के साथ बता दूं कि आज ही के दिन यानी कि 12 जुलाई को 1954 में जन्म हुआ था बॉलीवुड की अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का। जी हाँ, वो बहुत अच्छा गाती भी थी, तो क्यों ना उन्हीं की आवाज़ में अगला गीत सुन लिया जाए। उनका साथ दिया है अनवर ने, मौसम मौसम लवली मौसम, फिल्म का नाम थोड़ी सी बेवफाई। गुलजार ने इस गीत को बड़े खूबसूरती से कलमबद्ध किया है और खयाम ने संगीतबद्ध किया है।

मशहूर प्लेबैक सिंगर एस जानकी का शनिवार को मैसूर के अपोलो हॉस्पिटल में 88 साल की उम्र में निधन हो गया। ये खबर उनकी पोती अप्सरा वेधुला ने सोशल मीडिया पर

शेयर किया था। परिवार ने बताया कि दिग्गज सिंगर के निधन के समय उनके करीबी लोग उनके साथ थे। परिवार ने इस दुख की घड़ी में जो है प्राइवेसी बनाए रखने का अनुरोध किया। बाद में हॉस्पिटल ने पुष्टि की कि कई बार कार्डियक अरेस्ट आने के बाद जो है 7:30 बजे उनका निधन हो गया।

अभी जो भक्ति गीत आपने सुना उसे हमने लिया था फिल्म सुर संगम से। गीतकार वसंत देसाई, वसंत देव, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आवाज थी एस जानकी की। और अब रुख करते हैं अगले गीत की ओर, फिल्म रिफ्यूजी से। इस गीत को आप सुनेंगे सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:54 और आपको बता दूं कि सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय 14 जुलाई को तीसरा नमस्ते दिवस मनाएगा। इस अवसर पर कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होंगे, जबकि देश भर के शहरी स्थानीय निकायों में भी स्वच्छता कर्मचारियों के सम्मान और कल्याण से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंत्रालय ने शनिवार को बताया, यानी कल, कि ये आयोजन 2023 में शुरू की गई राष्ट्रीय यंत्रकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र नमस्ते योजना के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है और इसका मुख्य कार्यक्रम रविंद्र सदन में दिव्य कला मेले के साथ आयोजित होगा। और अब समय हो चला है कि मैं आपसे कहूं कि हाँ जी, आऊंगी दोबारा मिलने आपसे खरा सोना पर ही 11:10 पर, लेकर कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। और इस बीच अगर आपको मेरी याद आ जाए तो आप ट्यून कर सकते हैं दिल से दिल तक वाला चैनल 107 FM रेनबो। 10:02 से लेकर 11 बजे तक रहूंगी उस चैनल पर, लेकर कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप। और अब समय हो चला है कि मैं आपसे विदा लूं, आज्ञा लूं, तो चलते चलते यही कहूंगी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और चारों तरफ खुशियों के फूल बिखेरते रहिए और आपका दिन मंगलमय हो। अब इस जो गाना मैं प्ले करूंगी, इस गाने को सुनिए और संडे का दिन है तो कुछ सत्सवर लीजिए।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं।

0: अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोसकोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृह मंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट

0: ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पहले दिन समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दूसरे और अंतिम दिन कल समिति ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर, विपक्ष के नेता यूरिया लेमाव तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की। इससे पहले समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का दौरा करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकवोक द्वीप के पास रट नगोवाई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमेरिका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं कर

0: करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए दो अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
1: और अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने INS महेंद्रगिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ AI से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है, हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं, इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब एक हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा सम्पन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए, ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi concludes his 3-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान श्री मोदी ने ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार समझौता भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा को गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में एक विशाल अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधरोपण महायज्ञ का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किश्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव भिंड जिले के लहार से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ विचार विमर्श किया। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फू कोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई है। ये हादसा 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फू कोक द्वीप के पास अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में अगले 4 दिन तक मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इंग्लैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड का मैच अभी जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीम 1-1 गोल से बराबरी पर थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi has concluded his three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand and departed for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. India and New Zealand elevated their bilateral ties to a strategic partnership and signed several agreements and memoranda of understanding across key sectors. These include defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry sectors. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
1: Bharat aur New Zealand ke rishte mein yaadein bhi hain, dosti bhi hain, values bhi hain aur ek commitment bhi hai. Bharat New Zealand ki yahi का एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है. हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है. हवाएं हमारे साथ है. समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है. इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है. पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे.
2: Food Safety and Standards Authority of India has issued 9 notices to food business operator Swiggy Instamart following multiple consumer complaints alleging violations under the Food Safety and Standards Act 2006. In a social media post, FSSAI said that the food business operator has been directed to submit a detailed explanation and compliance report, failing which appropriate legal action will be initiated. Consumer complaints alleged the supply of expired, spoiled, rotten, contaminated and otherwise unsafe food products through Swiggy Instamart. Union Home Minister Amit Shah will inaugurate and lay the foundation stone of various people-centric projects of Ahmedabad Municipal Corporation worth 405 crore in Ahmedabad today. During the program, the minister will also kickstart an ambitious mass afforestation campaign for his Gandhinagar Lok Sabha constituency. Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hoang has ordered a probe into the speedboat tragedy near Phu Quoc Island that claimed the lives of 15 Indian tourists. According to a statement issued by Consulate General of Vietnam in Mumbai, Prime Minister Hoang asked authorities to identify shortcomings, determine causes of the accident and implement corrective measures to prevent similar incidents in the future. The tragic incident occurred yesterday when the speedboat carrying 36 people, including 4 crew members, flipped after reportedly being hit by a sudden wave off Rut Nigoy Islet. The United States launched a new round of strikes against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps forces attacked a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. U.S. military said the strikes were carried out in the direction of President Donald Trump. U.S. CENTCOM said the attack on the commercial vessel left a civilian crew member missing and the vessel is unable to continue the journey due to an onboard fire and significant engine room damage. Explosions were heard in Keshm Island, Bandar Abbas and Sirik following the attacks. Meanwhile, Iran has closed Strait of Hormuz until further notice. Iran's IRGC Navy said the sea route was closed following an incident involving a vessel that attempted to use an unauthorized route. The IMD has forecast heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for the next 4 days. These places include Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Chandigarh, Haryana, Delhi, East Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Gangetic, West Bengal, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura and Odisha. In tennis, the 21-year-old Linda Noskova won her maiden Grand Slam title after defeating fellow Czech Karolina Mukova 6-2, 5-7, 6-3 in Wimbledon women's singles final at Centre Court, London last night. And that is the end of this news bulletin.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान श्री मोदी ने ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार समझौता भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा को गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जनकेंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की भी शुरुआत करेंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में एक विशाल अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव भिंड जिले के लहार से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को नवम्बर 2025 से प्रत्येक महीने 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त सदस्य समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुंग ने फूक वोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फूक वोक द्वीप के पास अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में अगले 4 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उड़ीसा शामिल है। विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और खेलों में फीफा विश्व कप में अमेरिका के कंसास में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हरा दिया है। इसके साथ ही अर्जेंटीना की टीम प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इससे पहले आज सुबह फ्लोरिडा में खेले गए एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराया और सेमीफाइनल में जगह बना ली। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। अब सेमीफाइनल में बृहस्पतिवार को अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फू क्वोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा कल उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फू क्वोक द्वीप के पास रट नगुआई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हॉर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमेरिका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए 2 अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। तूफान बावी के कल रात पूर्वी चीन के तटीय शहर ताइझोउ में आने की खबर है। इस बीच लगभग 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: इससे पहले तूफान बावी जापान के दक्षिण साकिशिमा द्वीप से टकराया और उत्तरी ताइवान के पास से गुजरा। हालांकि यह अब उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ तेज वर्षा का खतरा बना हुआ है। सरकारी मीडिया के अनुसार झेजियांग प्रांत से 17 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसके अलावा फूजियान प्रांत और बीजिंग से 1-1 लाख से अधिक तथा शंघाई से करीब 34,000 लोगों को भी निकाला गया है। जापान और ताइवान में अब तक इस तूफान से किसी की मृत्यु की खबर नहीं है। हालांकि बावी के असर से दक्षिण

0: पश्चिम मानसून के और सक्रिय होने के कारण फिलीपींस में भारी बारिश से 17 लोगों की मौत हो गई। ताइवान के अग्निशमन विभाग के अनुसार 113 लोग घायल हुए हैं। इनमें अधिकांश लोग तेज हवाओं के दौरान मोटरसाइकिल या साइकिल से गिरने, फिसलने या किसी वस्तु की चपेट में आने से घायल हुए हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: वेनेजुएला में पिछले महीने आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या अब 4,300 से अधिक हो गई है। 24 जून को ला ग्वाइरा में कुछ ही सेकंड के अंतराल पर 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंप आए थे। ये एक सदी से अधिक समय में वेनेजुएला के सबसे भीषण भूकंप माने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सप्ताह 13 लाख लोगों की मदद के लिए 29,60,00,000 अमरीकी डॉलर की राहत राशि जुटाने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के प्रमुख टॉम फ्लेचर ने मंगलवार को ला ग्वाइरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लापता बच्चों की माओं से भी मुलाकात की। उधर दक्षिण पूर्वी स्पेन के अंडालूसिया क्षेत्र में भीषण जंगल की आग को काबू में करने के लिए सैकड़ों दमकल कर्मी और सैन्य कर्मी संघर्ष कर रहे हैं। ये आग हाल के दशकों में देश की सबसे घातक जंगल की आग में से एक बन गई है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जी, जागृति खेल खबरों में सबसे पहले चलते हैं फुटबॉल के मैदान की तरफ। तो फीफा विश्व कप में अमेरिका के कंसास में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हरा दिया है। इसके साथ ही अर्जेंटीना की टीम प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इससे पहले आज सुबह फ्लोरिडा में खेले गए एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। अब सेमीफाइनल में बृहस्पतिवार को अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हानियू और क्रिस्टिनिया म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफिनी की जोड़ी से होगा। यह मैच शाम 5:30 से शुरू होगा। और जागृति अगर बात करें क्रिकेट की, तो इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम T20 मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है। तो जागृति, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। तूफान बावी पूर्वी चीन के तटीय इलाके से टकराया। लगभग 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम नरेश मागो विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi concludes his three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. US launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. Typhoon Bavi makes landfall in eastern China. 2 million people evacuated. Argentina beats Switzerland to set up FIFA World Cup semi-final clash with England. And Linda Noskova beats Karolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. Prime Minister Narendra Modi has concluded his three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand and has departed for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. India and New Zealand elevated their bilateral ties to a strategic partnership and signed several agreements and memoranda of understanding across key sectors. These include defense, tourism, sports, disaster management, and dairy and animal husbandry sectors. A major highlight of the visit was a community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
4: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
3: On the occasion, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations.
4: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है ये मेरा सौभाग्य है मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं साथियों प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था
3: Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said Prime Minister Modi's three-country visit delivered significant outcomes, advancing cooperation across several sectors, including trade, technology, security, education, innovation, and people-to-people exchanges, among others. After concluding his three-nation visit, Prime Minister has arrived in New Delhi. Vietnamese Prime Minister Le Minh Hun has ordered a probe into the speedboat tragedy near Phu Quoc Island that claimed the lives of 15 Indian tourists. According to a statement issued by the Consulate General of Vietnam in Mumbai, Prime Minister Hun has asked authorities to identify shortcomings, determine the causes of the accident and implement corrective measures to prevent similar accidents in the future. The Vietnamese Prime Minister has also directed the authorities to take strict legal action against anyone found to have violated regulations that may have caused the accident. The Vietnamese Prime Minister has also directed the authorities to provide assistance to the victims and their families. The tragic incident occurred yesterday when the speedboat carrying 36 people, including four crew members, flipped after reportedly being hit by a sudden wave off Rut Ngoi Islet. While local authorities managed to rescue 21 people, 15 Indians, including two women, died. The Indian Embassy in Vietnam has released the list of the deceased provided by the Vietnamese authorities. Of the 15 deceased, 10 are from Tamil Nadu, 3 from Andhra Pradesh and 2 from Kerala. The United States launched a new round of strikes against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC forces attacked a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. A report.
5: U.S. military said the strikes were carried out at the direction of President Donald Trump. U.S. CENTCOM said the attack on the commercial vessel left a civilian crew member missing and the vessel is unable to continue the journey due to an onboard fire and significant engine room damage. Explosions were heard in Keshem Island, Bandar Abbas and Sirik following the attacks. Meanwhile, Iran has closed the Strait of Hormuz until further notice. Iran's IRGC Navy said the sea route was closed following an incident involving a vessel that attempted to use an unauthorized route. The force said no ships will be allowed to transit through the strategic waterway until what it called U.S. interference in the region ends. The announcement came after the IRGC claimed it fired a warning shot and stopped the vessel. Meanwhile, U.S. President Donald Trump said that negotiations with Iran will continue despite tensions. Jagyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
3: This is Akashwani. You're listening to World News. We bring you top international news and updates from around the globe.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में उन्होंने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के मंच को भी संबोधित किया और दोनों देशों के प्रमुख उद्योगपतियों से बातचीत की। यात्रा के 3रे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह 40 वर्षों में न्यूजीलैंड की पहली यात्रा थी। श्री मोदी ने ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान में भी शामिल हुए। वहीं उत्तर

0: प्रदेश में राज्य सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव अप्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में जारी किए गए हैं। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्विगी इंस्टामार्ट को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में निर्धारित अवधि समाप्त होने वाले खराब, सड़े गले, दूषित और अन्य असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति के आरोप लगाए गए हैं। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फूकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई थी। ये हादसा 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फूकोक द्वीप के पास अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। कल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया और अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच गया है। वहीं एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुके हैं। मौसम विभाग ने देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में अगले 4 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after concluding his 6-day successful visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In the first leg of his 3-nation tour, Mr. Modi had visited Indonesia from the 6th to the 8th of this month at the invitation of President Prabowo Subianto. During the visit, the Prime Minister held bilateral discussions with the Indonesian President and reviewed the progress made in the partnership. In the second leg of his tour, Prime Minister Modi travelled to Melbourne, Australia. Mr. Modi participated in the 3rd India-Australia Annual Summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. During his visit, Prime Minister Modi also participated in the India-Australia CEOs Forum, where he addressed a gathering of top business leaders from both the countries. On the 3rd and last leg of his 3-nation visit, the Prime Minister visited Auckland from 10th to 11th July at the invitation of New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The visit to New Zealand was the first visit by an Indian Prime Minister in 40 years. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
2: Bharat aur New Zealand ke rishte mein yaadein bhi hain, dosti bhi hain, values bhi hain aur ek commitment bhi hai. Bharat New Zealand ki yahi vaaka ek nayi yatra par nikalne ke liye taiyar hai. हमारे सामने

बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 11:11:22 और 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर हाजिर है आपकी रेडियो फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। और ऐसा है दोस्तों कि आज संडे का दिन है तो क्यों ना हम यूं तो हम किसी एक सेलिब्रिटी पर प्रोग्राम करते हैं लेकिन आज कुछ डबल बुनांजा टाइप हो जाए। चलिए अब जब आप घर बैठे बैठे सुनना चाहते हैं और वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं तो भला हम आप

की बात कैसे ना माने। तो शुरुआत करना चाहूँगी उस गीत के साथ। जी हाँ, उस गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगी जिसे हमने लिया है फिल्म एक बाप छह बेटे। और आपको बता दूं कि आज ही के दिन 1954 में जन्म हुआ था प्लेबैक सिंगर एक्ट्रेस बॉलीवुड की अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का। तो क्यों ना आपको सुनवाऊं उनकी ही आवाज़ में गाई हुई ये गीत जिसमें साथ दिया है उनका शहनशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी ने।

चलिए दोस्तों, अगला गाना भी आपको सुनवाती हूँ सुलक्षणा पंडित की आवाज में, और उनका साथ दिया है अनवर ने। फिल्म का नाम थोड़ी सी बेवफाई।

सुलक्षणा पंडित एक हिंदी फिल्म अभिनेत्री थी। सुलक्षणा पंडित हरियाणा राज्य के हिसार अब फतेहाबाद जिले के पीली मंदोदरी गांव के एक संगीत परिवार से आती थी। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और महान पंडित जसराज उनके चाचा थे। राजगढ़ के पूर्व सांसद और जनसंघ नेता वसंत कुमार पंडित उनके चाचा भी थे। उन्होंने 9 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। उनके बड़े भाई मंधीर पंडित, जो पहले 1980 के दशक में जतिन पंडित के साथ मंधीर जतिन की जोड़ी के साथ संगीतकार थे, मुंबई में उनके लगातार साथी थे। उन्होंने मंच पर तब तक प्रदर्शन किया और गाया जब तक सुलक्षणा किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी जैसे दिग्गजों के साथ अपने कई लाइव संगीत कार्यक्रमों के माध्यम से एक प्रमुख पार्श्व गायिका नहीं बन गई। और अब अगला गाना फिल्म अपनापन से किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

सुलक्षणा पंडित जी हाँ, आज लो आ गई उनकी याद में। आप कार्यक्रम सुन रहे हैं उन पे, और आगे ये आपसे साझा करना चाहूंगी कि उनके तीन भाई मंधीर, जतिन और ललित पंडित, और तीन बहनें स्वर्गीय माया एंडरसन, स्वर्गीय संध्या सिंह और विजेता पंडित हैं। उनके पिता प्रताप नारायण पंडित एक कुशल शास्त्रीय गायक थे। उनके भतीजे यश पंडित एक भारतीय टेलीविजन अभिनेता हैं। भतीजी श्रद्धा पंडित और श्वेता पंडित पार्श्व गायिका हैं। उनकी चचेरी बहन पार्श्व गायिका हेमलता है। और फिलहाल अगला गाना आप सभी के लिए फिल्म उलझन से किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में

अगला गीत आप सभी के लिए किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज में फिल्म लहू के दो रंग से, गीतकार फारूक कैसर और संगीतकार बप्पी लहरी।

अभिनेता संजीव कुमार द्वारा सुलक्षणा पंडित के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। काम मिलना बंद हो जाने के बाद उन्हें मुश्किल दौर का सामना करना पड़ा। उनकी बहन विजेता पंडित और बहनोई संगीतकार आदेश श्रीवास्तव ने उनके लिए एक भक्ति एल्बम बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा करने से पहले ही आदेश श्रीवास्तव की मृत्यु हो गई।

मशहूर गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का निधन 71 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा पड़ने से हुआ। उनके भाई और संगीतकार ललित पंडित के अनुसार उन्हें सांस लेने की तकलीफ हुई थी और मुंबई के नानावती अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। अगला गीत फिल्म संकल्प से सुलक्षणा पंडित की आवाज में, गीतकार कैफी आजमी, संगीतकार खयाम। तू ही सागर, तू ही किनारा।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 11:54 और इस वक्त आप सुन रहे हैं 100.1 FM Gold खरा सोना पर आपका ही पसंदीदा हिंदी कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। और आज लो आ गई उनकी याद में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए याद कर रहे हैं सुलक्षणा पंडित को। बेहतरीन अभिनेत्री और साथ ही प्लेबैक सिंगर भी थी, बहुत अच्छी गायिका थी। और अब जो समय शेष बचा है, जाहिर सी बात है कि उसमें भी आप उनके ही आवाज़ में कोई गाना सुनना पसंद करेंगे, तो बिल्कुल मैं सुनवाऊंगी। सुलक्षणा पंडित 70 और 80 के दशक के दिग्गज कलाकार थी। अपने आखिरी सालों में वे गुमनामी और बीमारी की जिंदगी जी रही थी। बताया जाता है कि एक बार बाथरूम में गिरने और हिप बोन टूटने के बाद उनकी कई सर्जरीज हुई थी, जिससे वो काफ़ी टूट गई थी। उनकी छोटी बहन और अभिनेत्री विजेता पंडित उनकी देखभाल कर रही थी। एक अजीब संयोग ये भी रहा कि उनका निधन 6 नवंबर को उसी दिन हुआ जिस दिन उनके कथित प्रेमी और दिवंगत अभिनेता संजीव कुमार की पुण्यतिथि होती है। और अब एक खूबसूरत संगीत आप सभी के लिए फिल्म गृह प्रवेश से। सुलक्षणा पंडित और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में इस गीत को सुनेंगे जिसे कलमबद्ध किया है गुलजार ने। और इस गीत को सुनते सुनते आज्ञा दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सुलक्षणा पर्वत को, फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और चारों तरफ खुशियों के फूल बिखेरते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा के दौरान हुए महत्वपूर्ण समझौतों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदार देश बनकर उभरा है।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन

0: क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में दो दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में जारी किए गए हैं। प्राधिकरण ने स्विगी इंस्टामार्ट को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फूक्वोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। यह हादसा 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट के अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after concluding his 6-day successful visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In the first leg of his three-nation tour, Mr. Modi visited Indonesia from 6th to 8th of this month at the invitation of President Prabowo Subianto. During the visit, the Prime Minister held bilateral discussions with the Indonesian President and reviewed the progress made in the partnership. In the second leg of his tour, the Prime Minister travelled to Melbourne, Australia. Mr. Modi participated in the third India-Australia annual summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. During his visit, Prime Minister Modi also participated in the India-Australia CEOs Forum, where he addressed a gathering of top business leaders from both countries. On the third and last leg of his three-nation visit, the Prime Minister visited Auckland from 10th to 11th of July at the invitation of New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Employees Provident Fund Organisation has introduced the Amnesty Scheme 2026, providing a one-time opportunity for establishments operating exempted provident fund to regularise their status. Labour and Employment Ministry said that the scheme will remain open for a period of 6 months. This scheme applies to establishments that have been operating a Provident Fund Trust recognised under the Income Tax Act 1961. The Ministry said eligible establishments shall submit a formal application through email to the concerned regional office. An exempted provident fund is an employer-managed PF scheme that handles its own provident fund contributions internally through a private trust rather than depositing them directly into the employee's provident fund organization. In Maharashtra, the death toll in the Moshi waste depot accident in Pune district has risen to 9 after the bodies of 7 more victims were recovered during the 4th day of rescue operations today. One person remains trapped under the garbage mound and search efforts are continuing. The accident occurred on July 8th when a massive heap of garbage

0: वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का भी शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने ले मिन हुन ने फूकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। खतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। शेख हमद ने क्षेत्रीय परंपरा को तोड़ते हुए 2013 में स्वेच्छा से अपने पुत्र को सत्ता सौंपने से पहले 18 वर्षों तक कतर पर शासन किया। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हानयू और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादेनोवक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रिएला ड्राबोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after concluding a 6-day successful visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In the first leg of his three-nation tour, Mr. Modi visited Indonesia from 6th to 8th of this month at the invitation of President Prabowo Subianto, During this visit, the Prime Minister held bilateral discussions with the Indonesian President and reviewed the progress made in the partnership. In the second leg of his tour, the Prime Minister travelled to Melbourne, Australia.

0: आकाशवाणी FM गोल्ड खांटी सोना।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: Uttar Pradesh, Gangetic West Bengal and Himachal Pradesh today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India condemns attack on commercial vessel GFS Galaxy off coast of Oman. 10 Indians rescued, one reported missing. New Delhi expresses concern over continuing attacks on commercial shipping in the region. Prime Minister Narendra Modi returns to New Delhi after concluding several agreements during his visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones of several development projects in Ahmedabad. Employees Provident Fund Organization introduces a six-month amnesty scheme for establishments operating Private Provident Fund Trust to regularize their status. In Wimbledon, Jannik Sinner to lock horns with Alexander Zverev for men's singles title this evening. And in FIFA World Cup, England and Argentina enter semi-finals. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमरीकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने अपने तीन देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
1: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि यह योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
3: ईपीएफओ की एमिनिस्ट योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
4: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका S. जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
6: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में S. जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। S. जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। S. जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है, जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि S. जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
7: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हानयू और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादेनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज

अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी एफएम गोल्ड खांटी सोना।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: गाने कथाएं गोल्डन समय, আপনি শুনছেন 100.1 FM Gold, 100.1 FM Gold, FM Gold.
2: কিছু গান কিছু কথা আপনি শুনছেন সুরেলা সফর 100.1 FM Gold এ। সুরেলা সফর, সুরেলা সফর, সুরেলা সফরে আজ জুটিতে দুটিতে, জুটিতে

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को अब तक सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीर

को भारत लाया जाएगा। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को अब तक सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रखे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। अमरीका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान के ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। देशभर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके अंतर्गत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि फू क्वॉक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के 3रे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 177 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी के आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की है। उधर विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का फाइनल आज इटली के यानिक सिगर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवाहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू किए। ये हमले हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमलों के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों

0: को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय ने यमन यात्रा संबंधी 2017 की अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर कुछ शर्तें लगाने के लिए जारी की गई थी। मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को यमन की अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। अगर जरूरी हो तो स्थानीय सुरक्षा स्थिति का पूरा आकलन करने के बाद यात्रा करने का परामर्श दिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के समाज सुधारकों का महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी मन्नाथ पद्मनाभन की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने मन्नम स्मृति मंडपम का भी उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री मन्नाथ पद्मनाभन आजीविक सामाजिक न्याय, समानता, शिक्षा और समुचा सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत एक पौधा भी लगाया। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के अंतर्गत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जल संचयन को जन आंदोलन में बदलना है। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव उपस्थित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि देश ने एक महान गायिका को खो दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 227 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी के आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में आज महिला डबल्स और पुरुष सिंगल्स के फाइनल खेले जाएंगे। महिला डबल्स में शाम 5:30 बजे चीन की गुआव हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टलिना माल्डोनोविका की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्राबोस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। वहीं पुरुष सिंगल्स का फाइनल इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेरेव के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. India has condemned the attack on the commercial vessel GFS Galaxy off the coast of Oman today. The External Affairs Ministry informed in a statement that out of 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one Indian national is reportedly missing. It said the Indian Embassy in Oman is closely monitoring the situation and is proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. India has thanked the Omani authorities for their support. Meanwhile, New Delhi has expressed concern over the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region. It reiterated the call for immediate de-escalation of tensions and the conclusion of ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The United States launched

नमस्कार दोस्तों, शाम के इस खूबसूरत पड़ाव पर आपकी हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना आरजे अंकित और आप सुन रहे हैं 100.1 FM गोल्ड खरा सोना। कार्यक्रम है चाय और क्लासिक्स।

दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम दस्तक देती है तो मन चाहता है कुछ पल अपने लिए हाथों में चाय की प्याली हो, खिड़की से आती ठंडी हवा हो और साथ हो हिंदी सिनेमा के सदाबहार नगमे। यही तो है हमारी इस महफिल की पहचान। तो अपनी चाय की पहली चुस्की लीजिए और चलिए निकल पड़ते हैं संगीत के उस सुनहरे दौर में जहां हर गीत एक कहानी है और हर धुन एक एहसास।

फिल्म गोलमाल से दोस्तों आप सुन रहे हैं तो किशोर कुमार की आवाज में एक बहुत ही प्यारा सा गीत राहुल देव बर्मन ने सजाया था, संगीत से गुलजार ने सवारा था बोल से। दोस्तों ये वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर गानों का सिलसिला रहेगा जारी, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए 100.1 FM गोल्ड खरा सुना पे RJ अंकित के साथ।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है दोस्तों 100.1 FM गोल्ड खराब सुना पर आरजे अंकित आपके साथ। और 5:23 PM हो चुका है, रहने वाला हूं इस कार्यक्रम में 6:30 बजे तक आपके साथ। दोस्तों जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई शायद यही है कि हर पल अनमोल है, जो पल हमारे पास है वही सबसे खूबसूरत है। पुराने गीतों की यही खासियत है कि वे सिर्फ मनोरंजन नहीं करते बल्कि जीवन का कोई ना कोई संदेश भी दे जाते हैं। अगर इस समय आप घर पर लौट रहे हैं, ट्रैफिक में हैं या अपने घर की बैल्कनी में बैठकर चाय का आनंद ले रहे हैं तो हमारी कोशिश है कि आपकी ये शाम और भी सुरीली बन जाए। अब सुनिए एक ऐसा गीत जिसमें प्यार की मासूमियत भी है और प्रकृति की ताजगी भी।

फिल्म आराधना से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत, एस डी वर्मा का संगीत और आनंद बख्शी के बोल। दोस्तों, चाय की सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? ये सिर्फ थकान नहीं मिटाती है, ये बातचीत शुरू कर देती है। कितनी ही दोस्तियां, कितनी ही यादें और कितनी ही मुस्कुराहटें एक कप चाय के साथ जुड़ी होती है। और जब चाय के साथ पुराने गीत हो तो शाम सचमुच यादगार बन जाती है। अब पेश है एक ऐसा गीत जिसे सुनकर लगता है जैसे पहाड़ों की ठंडी हवा हमारे आसपास बह रही हो।

हिमालय की गोद में से दोस्तों आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में ये गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और आनंद बख्शी के थे बोल। क्या आप जानते हैं 60 और 70 के दशक में गीतों की रिकॉर्डिंग के दौरान पूरी ऑर्केस्ट्रा एक साथ बैठती थी। कई बार एक गीत में 80 से 100 तक वाद्य यंत्र का इस्तेमाल होता था और अगर किसी एक कलाकार से वह छोटी सी भी गलती हो जाती तो पूरा टेक दोबारा रिकॉर्ड किया जाता था। शायद इसी मेहनत ने इन गीतों को अमर बना दिया। अब सुनिए एक ऐसा गीत जिसकी मिठास आज भी बरकरार है।

हेमंत कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे बात एक रात से, बात एक रात की से बहुत प्यारा सा गीत, एस डी बर्मन का संगीत, मजरू के बोल। दोस्तों, शाम का रंग हर दिन अलग होता है, कभी ये उम्मीद लेकर आती है, कभी सुकून और कभी किसी अपने की याद। पुराने गीतों की खासियत यही है कि वे हमारी हर भावना का साथ निभाते हैं, शायद इसलिए इन्हें सुनते हैं समय का पता ही नहीं चलता। अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसकी धुन शुरू होते ही चेहरा मुस्कुरा उठता है।

फिल्म अनाड़ी से मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत शंकर जयकिशन का संगीत शैलेंद्र के बोल। उम्मीद है आपकी शाम चाय की खुशबू और सदाबहार गीतों के साथ और भी खुशनुमा बन रही होगी। पुराने गीतों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि हर बार सुनने पर ये कोई नई याद, कोई पुराना चेहरा या जिंदगी का कोई सुनहरा पल हमारे सामने ले आते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं।

0: फिल्म प्रेम पुजारी से किशोर कुमार की आवाज में एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे, संगीत से सजाया था एसडी बर्मन ने, लिरिसिस्ट थे नीरज।
1: हंड्रेड पॉइंट वन एफएम गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति।
0: पीएम स्वनिधि योजना यानी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक माइक्रो क्रेडिट सुविधा है जो स्ट्रीट वेंडर्स को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए बिना गारंटी यानी कोलेटरल फ्री के किफायती ऋण प्रदान करती है। योजना के मुख्य आकर्षण अगर बात करें दोस्तों तो ऋण की राशि और अवधि प्रथम चरण यानी फर्स्ट साइकिल में 10,000 रुपये एक वर्ष के लिए है, द्वितीय चरण यानी सेकंड साइकिल 20,000 रुपये समय पर पहला लोन चुकाने पर है और तृतीय चरण यानी थर्ड साइकिल 50,000 रुपये समय पर दूसरा लोन चुकाने पर है। ब्याज सब्सिडी की बात करें तो समय पर ऋण चुकाने पर सरकार द्वारा 7% प्रतिवर्ष की ब्याज सब्सिडी दी जाती है जो सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है। डिजिटल तरीके से भुगतान लेने पर प्रति माह 1200 रुपये तक और 100 रुपये प्रति माह की कैशबैक भी मिलता है। पात्रता के लिए वेंडर के पास शहरी स्थानीय निकाय यानी यूएलबी द्वारा जारी वेंडिंग सर्टिफिकेट या पहचान पत्र होना चाहिए या उनका नाम सर्व सूची में होना चाहिए। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन या पूरी जानकारी पीएम स्वनिधि पोर्टल या माई स्कीम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
1: 100.1 एफएम गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति।
0: PM हो चुका है दोस्तों, आरजे अंकित आपके साथ, कार्यक्रम चल रहा है चाय और क्लासिक्स आपके अपने चैनल पर यानी 100.1 एफएम गोल्ड खरा सुना पर। इस कार्यक्रम में रहूंगा मैं 6:30 तक आपके साथ सुना रहा हूँ बैक टू बैक कुछ सुपर हिट ओल्ड बॉलीवुड ट्रैक्स और एफएम गोल्ड पर ही आप हमारा कार्यक्रम सुन सकते हो। साथ साथ दोस्तों आप न्यूज ऑन एयर प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप पर भी हमारा ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। दोस्तों पुराने दौर के गीतों में सिर्फ धुने ही नहीं बल्कि खूबसूरत शायरी भी होती थी। गीतकार हर शब्द को बड़ी नजाकत से चुनते थे और संगीतकार उन शब्दों को ऐसी धुन देते थे कि वे हमेशा के लिए दिलों में बस जाते थे। फूलों के रंग से ऐसा ही एक गीत है जो खत लिखने की उस पुरानी परंपरा को भी याद दिलाते हैं जब भावनाएं कागज पर उतरती हैं। अब बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर।

फिल्म कोहरा से दोस्तों आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में, गीत संगीत से सजाया था खुद हेमंत कुमार ने, बोल लिखे थे कैफी आजमी ने। एक कप चाय उसके साथ अगर कोई अपना बैठा हो तो बातचीत अपने आप लंबी हो जाती है। शायद इसलिए शाम की चाय को रिश्तों का सबसे प्यारा बहाना कहा जाता है। कुछ लोग चीनी कम पसंद करते हैं, कुछ अदरक वाली चाय, लेकिन संगीत हर स्वाद के साथ घुल जाता है। और अब पेश एक ऐसा गीत जिसे सुनते ही होठों पर मुस्कान आ जाती है।

0: वाह क्या शानदार शुरुआत रही दोस्तों। अभी तो हमारी महफिल ने रफ्तार पकड़ी है, आगे भी आपके लिए और भी अनमोल गीत, कुछ दिलचस्प फिल्में, किससे चाय की महक से जुड़ी बातें और संगीत के उस सुनहरे दौर की यादें जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। मैं हूं आपका अपना आरजे अंकित और आप सुन रहे हैं चारों क्लासिक सिर्फ 100.1 एफएम गोल्ड खरा सुना पर। कहीं मत जाइए, बस मैं थोड़ी देर के लिए आपको ले चल रहा हूं न्यूज रूम पर, जहां पर आप सुनेंगे न्यूज और फिर वापस मैं लौटूंगा 6:20 पर यहां पर एफएम गोल्ड पर कार्यक्रम चार क्लासिक्स लेकर सदाबहार गीतों के साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि यह अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। उसने दोहराया है कि वो इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। ये हमले होर्मुज

0: कुब्ज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 250 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स फाइनल्स में चीन की गुआ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मेल्डोनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील के लुइसा स्टेफिनी से जारी है। पुरुष सिंगल्स का फाइनल आज इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. India has condemned the attack on the commercial vessel GFS Galaxy off the coast of Oman today. The External Affairs Ministry informed in a statement that out of 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one Indian national is reportedly missing. It said the Indian Embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. India has thanked the Omani authorities for their support. New Delhi has expressed concern over the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region. It reiterated the call for immediate de-escalation of tensions and the conclusion of ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The United States launched fresh airstrikes on Iran this morning. The airstrikes came after Tehran attacked a commercial vessel in the Strait of Hormuz, setting it ablaze and forcing its crew to abandon the ship. Iran retaliated with missile and drone attacks targeting Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan, and the United Arab Emirates. Iran's Revolutionary Guard said it has closed the Strait of Hormuz until further notice and warned of further action if US strikes continue. The mortal remains of the 15 Indian nationals who lost their lives in yesterday's boat capsize near Phu Quoc Island in Vietnam are being transported to its Ho Chi Minh City. The Indian

0: Embassy in Vietnam in a social media post today informed that after the completion of necessary formalities there, the mortal remains will be transported to India at the earliest. Earlier in the day, the embassy said that 15 survivors of the tragic boat accident have been discharged from hospital after receiving medical treatment and are returning to India. Home Minister Amit Shah today inaugurated and laid the foundation stones of a series of development projects of the Ahmedabad Municipal Corporation worth 405 crore rupees in Gujarat. On the occasion, the minister also launched a massive tree plantation drive under the Ek Ped Mark Inam campaign, which saw the planting of over 1 crore 25 lakh saplings across his Lok Sabha constituency Gandhinagar today. Speaking on the occasion, Mr. Shah highlighted a long-term environmental roadmap to increase the green cover of the constituency to 20% by the 2029 elections. Union Minister Shivraj Singh Chauhan has emphasized that planting trees is extremely important for protecting the environment and ensuring a sustainable future. Addressing the Vriksh Mitra program and Paryavaran Sanrakshan Sankalp event in New Delhi, Mr. Chauhan said Prime Minister Narendra Modi has taken several key initiatives to tackle climate change and global warming. Union Minister for Housing and Urban Affairs Manohar Lal has emphasized the need for adopting environmental friendly technologies in construction sector. Speaking at the function organized on the 172nd Foundation Day of the Central Public Work Department in New Delhi, the minister stressed that while constructing any building or structure, the durability strength should not be compromised. On the occasion, the Union Minister also virtually laid the foundation stone of National Council for Public Works building at Ghaziabad in Uttar Pradesh. The government has refuted a fake image circulating on social media claiming that ethanol blended petrol can cause problems in a vehicle's fuel tank. The Press Information Bureau's fact-check unit has termed the claim as false. It said the Ministry of Petroleum and Natural Gas has clarified that E2 petrol supplied by oil marketing companies conforms to standards prescribed by the Bureau of Indian Standards. The United States, the United Kingdom, and a dozen other Western and Asian countries today reasserted that China's expansive claims in the South China Sea are illegal based on a 2016 arbitration ruling. A joint statement issued by the 40 nations said they reject destabilizing actions in the disputed waters that threaten regional stability. The South China Sea remains a major flashpoint with repeated territorial standoffs involving China and the Philippines, Vietnam, Malaysia, Brunei, and Taiwan. In the historic one-off women's test between hosts England and India, the Lords in London visitors were 250 for 4 in their second innings on day 3 when reports last came in. England were bowled out for 170 runs in their first innings. The semi-final lineup for the FIFA World Cup has emerged with Argentina, England, France and Spain sealing spots in the last four. England defeated Norway 2-1 while Argentina outclassed Switzerland 3-1 in the quarterfinal this morning. In the first semi-final, France will meet Spain at Dallas in US on Tuesday late night at 12:30 a.m. while England will take on Argentina on Wednesday late night at 12:30 a.m. Indian time. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है. मैं हूँ वैष्णवी. आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत के खिलौना उद्योग की, जो आज केवल बच्चों के मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि भारत के विनिर्माण, नवाचार, निर्यात और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभर रहा है. नई दिल्ली के भारत मंडपम में 4 से 7 जुलाई तक आयोजित 17वें टॉय बिज अंतर्राष्ट्रीय B2B एक्सपो में देश विदेश के निर्माता, निर्यातक, स्टार्टअप, डिजाइनर और खरीदार एक मंच पर आए, जहां भारतीय खिलौना उद्योग की बदलती तस्वीर देखने को मिली. इस प्रदर्शनी में पारंपरिक शिल्प से लेकर आधुनिक शैक्षणिक और इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों तक भारतीय कंपनियों ने अपनी विनिर्माण क्षमता, नवाचार और वैश्विक पहुंच का प्रदर्शन किया. लेकिन श्रोताओं, ये विषय केवल खिलौनों तक सीमित नहीं है. भारतीय खिलौना उद्योग में हो रहा बदलाव देश के विनिर्माण, नवाचार, गुणवत्ता और निर्यात क्षमता में आ रहे व्यापक परिवर्तन की भी कहानी कहता है. आज के कार्यक्रम में हम विश्लेषण करेंगे कि इस क्षेत्र में परिवर्तन की शुरुआत कैसे हुई, इसके क्या परिणाम सामने आए और भारत की अर्थव्यवस्था तथा व्यापार के लिए इसका क्या महत्व है. श्रोताओ, भारत में खिलौनों का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता में की खुदाई में मिले मिट्टी के खिलौने इस बात के प्रमाण है कि भारतीय समाज में खिलौने केवल मनोरंजन का साधन नहीं थे, बल्कि सीखने, कल्पना शक्ति और संस्कृति से जुड़ने का माध्यम भी थे। समय के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में लकड़ी, मिट्टी, कपड़े और धातु से बने पारंपरिक खिलौनों की समृद्ध परंपरा विकसित हुई, लेकिन आधुनिक दौर में भारतीय खिलौना उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लंबे समय तक घरेलू बाजार में आयातित खिलौनों की हिस्सेदारी बढ़ती रही। बड़ी संख्या में छोटे और कुटीर उद्योग सीमित संसाधनों के साथ काम कर रहे थे, जबकि सस्ते आयातित उत्पादों के कारण स्थानीय निर्माताओं के सामने प्रतिस्पर्धा भी लगातार बढ़ रही थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस उद्योग ने चुनौतियों से अवसर तक का ये सफर कैसे तय किया है, आइए विस्तार से समझते हैं।
3: पिछले कुछ वर्षों में भारत के खिलौना उद्योग ने उल्लेखनीय परिवर्तन देखा है। इस बदलाव के पीछे केवल बाजार की मांग नहीं, बल्कि नीतिगत सुधार, गुणवत्ता पर विशेष जोर और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने की एक व्यापक रणनीति भी रही है। वर्ष 2020 में सरकार ने राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना शुरू की। इसका उद्देश्य केवल खिलौनों का उत्पादन बढ़ाना नहीं था, बल्कि ऐसे खिलौनों को बढ़ावा देना था जो भारतीय संस्कृति, इतिहास और पारंपरिक ज्ञान से प्रेरित हों। इसके साथ ही बच्चों में सीखने के प्रभावी माध्यम के रूप में खिलौनों के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया गया। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था खिलौनों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, जिसे लागू कर भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य किया गया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारत में बिकने वाले खिलौने गुणवत्ता और सुरक्षा के निर्धारित मानकों पर खरे उतरे। इससे एक ओर उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ा, वहीं दूसरी ओर घरेलू निर्माताओं को भी गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिला। इन प्रयासों का असर अब आंकड़ों में भी दिखाई देने लगा है। वर्ष 2017-18 में भारत का कुल खिलौना निर्यात लगभग 153 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ष 2025 तक यह बढ़कर 385 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, यानी 8 वर्षों में निर्यात में 150% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। सबसे अधिक वृद्धि पारंपरिक और शैक्षणिक खिलौनों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के निर्यात में देखने को मिली। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड और पोलैंड जैसे देश भारतीय खिलौनों के प्रमुख बाजार बनकर उभरे हैं। दूसरी ओर पारंपरिक और शैक्षणिक खिलौनों के आयात में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि जो भारत वर्ष 2017-18 में खिलौनों के व्यापार में घाटे की स्थिति में था, वहीं वर्ष 2025-26 में इस क्षेत्र में व्यापार अधिशेष यानी ट्रेड सरप्लस हासिल करने में सफल रहा। इस परिवर्तन में उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। टॉयकैथोन, ई टॉयकैथोन और ई टॉय लैब जैसी पहले नई पीढ़ी के नवाचारों को प्रोत्साहित कर रही, जिससे भारत का खिलौना उद्योग पारंपरिक शिल्प और आधुनिक तकनीक दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है।
2: श्रोताओं, भारतीय खिलौना उद्योग में आए इस बदलाव को उद्योग जगत किस तरह देख रहा है, ये हमने जाना। लेकिन ये परिवर्तन केवल एक उद्योग तक सीमित नहीं है। इसके पीछे भारत की अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जुड़ी एक बड़ी तस्वीर भी है। आखिर खिलौना उद्योग को भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है और आने वाले वर्षों में ये क्षेत्र देश के विकास में क्या भूमिका निभा सकता है, आइए समझते हैं।
3: खिलौने अक्सर बच्चों के खेल और मनोरंजन से जोड़कर देखे जाते हैं, लेकिन किसी भी देश का खिलौना उद्योग उससे कहीं अधिक व्यापक महत्व रखता है। यह केवल उत्पाद नहीं बनाता, बल्कि डिजाइन, रचनात्मकता, तकनीक, कौशल विकास, विनिर्माण और रोजगार जैसे कई क्षेत्रों को भी गति देता है। भारत के संदर्भ में इसकी एक और विशेषता है, यहाँ खिलौनों की परंपरा हजारों साल पुरानी मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर चन्ना पटना के लकड़ी के खिलौनों, तंजावुर की गुड़ियों और देश के विभिन्न हिस्सों में बनने वाले पारंपरिक हस्त निर्मित खिलौनों तक, यह विरासत भारत की सांस्कृतिक विविधता और शिल्प कौशल की पहचान रही है। आज जब इन पारंपरिक खिलौनों को आधुनिक डिजाइन, बेहतर पैकेजिंग और वैश्विक बाजार से जोड़ा जा रहा है, तब यह केवल एक उद्योग नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान को भी नई पहचान दे रहा है। आर्थिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण होता जा रहा है। खिलौना उद्योग बड़ी संख्या में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME से जुड़ा हुआ है। इससे कारीगरों, छोटे निर्माताओं, व्यापारियों और स्थानीय उद्यमियों को आजीविका के नए अवसर मिल रहे हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में रोजगार भी तेजी से बढ़ रहा है। आज खिलौनों की दुनिया भी तेजी से बदल रही है। इससे पहले जहां खिलौनों का

0: उद्देश्य केवल मनोरंजन तक सीमित माना जाता था, वहीं अब माता पिता ऐसे खिलौनों को प्राथमिकता दे रहे हैं जो बच्चों में सीखने, रचनात्मक सोच और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करें। इसी कारण विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी STEM आधारित खिलौनों की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकों पर आधारित स्मार्ट खिलौने भी वैश्विक बाजार में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। यह भारतीय उद्योग के लिए भी नए अवसर लेकर आया है। नई दिल्ली में आयोजित टॉय बिज प्रदर्शनी में भी इस बदलाव की स्पष्ट झलक देखने को मिली। वहां पारंपरिक खिलौनों के साथ साथ शैक्षणिक किट, विज्ञान आधारित मॉडल, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने और स्वदेशी तकनीक से विकसित उत्पाद आकर्षण का केंद्र रहे हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: श्रोताओं, पिछले कुछ वर्षों में भारतीय खिलौना उद्योग में आए इस बदलाव के पीछे कई नीतिगत और संरचनात्मक परिवर्तन रहे हैं, लेकिन उद्योग जगत इस परिवर्तन को किस तरह देखता है? आकाशवाणी समाचार ने इसी विषय पर इंडिया SME फोरम के अध्यक्ष विनोद कुमार से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: पिछले कुछ वर्षों में भारत के खिलौना उद्योग में बड़ा बदलाव आया है। पहले हम खिलौनों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर थे, लेकिन आज भारत वैश्विक स्तर पर खिलौनों के निर्माण और निर्यात का एक उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। इस बदलाव का सबसे अधिक लाभ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप और कारीगरों को मिला है। अगर हम करीब 10 साल पहले की बात करें तो भारत में बिकने वाले लगभग 85% खिलौने विदेशों से आते थे। ये ज्यादातर कम लागत वाले देशों से आयात किए जाते थे। उस समय भारतीय खिलौना निर्माता, खासकर छोटे उद्योग और कारीगर, सस्ती विदेशी प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता के मानकों की कमी, बिखरी हुई आपूर्ति व्यवस्था, डिजाइन की सीमित क्षमता और बाजार तक कम पहुंच जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहे थे। लेकिन पिछले एक दशक में नीतिगत सुधार, गुणवत्ता पर जोर, स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने वाले कदम और आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रयासों से इस पूरे क्षेत्र में तेज बदलाव आया है। खिलौना उद्योग अब केवल बच्चों के मनोरंजन या उपभोक्ता वस्तुओं तक सीमित नहीं रहा है। आज ये निर्माण, संस्कृति, रचनात्मकता, कौशल विकास और निर्यात से जुड़ा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है, जिसमें सूक्ष्म और लघु उद्यमों की अहम भूमिका है।
1: श्रोताओं, भारतीय खिलौना उद्योग में आया ये बदलाव केवल बढ़ते निर्यात या घरेलू विनिर्माण तक सीमित नहीं है। ये इस बात का भी संकेत है कि सही नीतिगत समर्थन, गुणवत्ता पर जोर और नवाचार के बल पर भारत नए क्षेत्रों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खुद को तैयार कर रहा है। खिलौनों का ये उद्योग आज कारीगरों और MSME से लेकर स्टार्टअप और आधुनिक विनिर्माण इकाइयों तक लाखों लोगों के लिए नए अवसरों का माध्यम बन रहा है। वहीं पारंपरिक भारतीय शिल्प और आधुनिक तकनीक का ये संगम भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी वैश्विक मंच तक पहुंचा रहा है। श्रोताओं, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग स्मिता सिंह।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है 100.1 एफएम गोल्ड खरा सुना पर। आरजे अंकित आपके साथ और कार्यक्रम चल रहा है चाय और क्लासिक्स। रहूंगा इस कार्यक्रम में 6:30 तक आपके साथ, यानी हम पहुंच चुके हैं हमारे कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर। दोस्तों हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम दौर इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि उस समय हर कलाकार अपनी अलग पहचान रखता था। चाहे वो मोहम्मद रफी हो, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले या मुकेश, हर आवाज का अपना रंग था, अपनी आत्मा थी। शायद यही वजह है कि आज भी इन गीतों का आकर्षण बिल्कुल कम नहीं हुआ। अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जो समय की अहमियत हमें बड़ी सादगी से समझाता है।

फिल्म बरसात की रात से दोस्तों आप सुन रहे हैं थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में एक बहुत ही प्यारा संगीत, रोशन का संगीत शहीर लुधियानवी के बोल। दोस्तों बाहर मौसम चाहे जैसा भी हो, संगीत हमेशा मन का मौसम बदल देता है। कभी कोई गीत चेहरे पर मुस्कान ले आता है तो कोई गीत हमें उन लोगों की याद दिला देता है जो आज भी हमारे दिल के बेहद करीब है। बढ़ेंगे दोस्तों कार्यक्रम के आखिरी गीत की तरह और ये एक ऐसा गीत है जिसकी धुन में अपनापन है, सुकून है और एक मीठी सी ताजगी भी है। और इसी गीत के साथ आपका दोस्त अंकित ले लेगा इजाजत। मिलूंगा फिर आप लोगों से मैं कुछ दिनों बाद। तब तक लिए बाय, टेक केयर, सुनते रहिए, साथ रहिए 100.1 FM गोल्ड खरा सुना। और अगला कार्यक्रम होगा इस गीत के बाद थोड़ी देर में आप लोगों के लिए, तो बस कहीं मजे ही बने रहिए 100.1 FM गोल्ड खरा सुना पर।

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking calls from our listeners on mutual fund related queries. But do remember that we do not address stock or company specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I'm Sarabjit Kaur with my co-anchor Subodh Mishra.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-0481 और 2371-7106। श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट आकार

0: स्तोगी, आकार मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
1: जी धन्यवाद।
0: पहले हेडलाइंस के साथ सौरभजीत कौर।
2: फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टर्न नेट बायर्स आफ्टर 4 months, इन्फ्यूज मोर देन 15,000 करोड़ रुपीस इनटू इंडियन इक्विटीज सो फार इन जुलाई। सिचुएशन इन वेस्ट एशिया इंटेंसिफाइज एज ईरान वंस अगेन शट्स द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इन रिस्पॉन्स टू यूनाइटेड स्टेट्स फ्रेश एयर स्ट्राइक्स एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स टू फोकस ऑन मैक्रो इकोनॉमिक डेटा फर्स्ट क्वार्टर कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिजल्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स फॉर क्यूज नेक्स्ट वीक।
0: 4 महीने बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने रुख बदला और इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजार में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। पश्चिम एशिया में तनाव गहराया। अमेरिका के ताज़ा हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा आर्थिक आंकड़ों। कंपनियों की पहली तिमाही के नतीजों और वैश्विक गतिविधियों पर।
2: And before we go any further in the program, may we just once again remind our listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: Sarabjit aur hamare callers intezar mein
2: ji.
0: सीधे चलते हैं उनके पास। यूपी से विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
3: मार्केट मंत्र टीम और आज के एक्सपर्ट को नमस्कार।
0: नमस्कार
3: सर, मेरा प्रश्न ये है, मैं इक्विटी क्लास में एसआईपी के द्वारा मंथली एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टेड हूँ और सर बीच में जो मुझे कुछ एरियर मिलता है उसको मैं लमसम अमाउंट में, कम अमाउंट होता है तो उसको लिक्विड फंड में डाल के एसटीपी के माध्यम से मैं अपने करंट जो एसआईपी है, करंट म्यूचुअल फंड है, उनमें इन्वेस्टेड करता हूँ। अब सर चूंकि आईटीआर मुझे फिल करना है तो मैंने एआईएस डाउनलोड किया है, उसमें मुझे सर अपने म्यूचुअल फंड की एंट्रीज मिली हैं और उसमें सर एक सेल्स कंसिडरेशन और कॉस्ट ऑफ इक्विशन, ये दो मुझे चीजें मिली हैं जिसमें मैंने जैसे 5,000 रुपए का एसटीपी चालू किया हुआ था तो सेल्स कंसिडरेशन में 5,000 और कॉस्ट ऑफ इक्विशन में अमाउंट कम है 4,750 रुपए। तो मैम मुझे क्या टैक्स एप्लीकेबल होगा क्योंकि मैंने तो केवल एक लिक्विड फंड से और अपना जो करंट एसआईपी फंड है उसमें ही इन्वेस्टेड किया है, कोई रिडीम नहीं किया है कोई भी अमाउंट, तो क्या मुझे टैक्स एप्लीकेबल होगा और मुझे उस टैक्स को कहाँ ITR 1, जैसे मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ तो मुझे ITR 1 फिल करना है तो मुझे उसमें कहाँ शो करना होगा, क्योंकि मैंने AIS डिटेल चेक किया तो उसमें मुझे अपनी एंट्रीज जो भी मैंने लमसम अमाउंट किया था उसको एसटीपी के माध्यम से कई सारी एंट्रीज मिली है, मुझे उसको कैसे शो करना होगा, प्लीज गाइड करें।
1: विवेक जी बिल्कुल, आपको इस पे टैक्स देना पड़ेगा। भले ही आपने जो अपने म्यूचुअल फंड्स में आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो आपने रिडीम नहीं की, लेकिन जिस टाइम आपने एसटीपी सेटअप किया और एक लिक्विड फंड से आपका पैसा निकल करके हर महीने जब वो इक्विटी फंड में गया तो भले ही वो एक ट्रांसफ़र हुआ लेकिन टैक्सेशन पर्पज़ से उसको एक तरीके से यही माना जाएगा कि लिक्विड फंड में से पहले वो पैसा रिडीम हुआ और उसके बाद जा करके उस नए इक्विटी फंड में वो पैसा इन्वेस्टमेंट हुई। तो इसके लिए जैसे कि आपने अपने क्वेश्चन में खुद ही बताया कि कुछ 5,000 रुपये का सेल कंसिडरेशन है और 4,700 रुपये का जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, बेसिकली परचेज कॉस्ट है, तो जो इन दोनों का डिफरेंस है वो आपका मुनाफा है, प्रॉफिट है, जिस पर कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स भरने के लिए देखिए, जो डेट फंड्स है, डेट फंड्स पे आजकल जो टैक्स है वो आपके जो भी आपका जो इनकम पे जो स्लैब रेट है, जिस भी आप स्लैब रेट में फॉल करते हैं वही आपको उसी पे आपके लिए टैक्स एप्लीकेबल होएगा। तो सबसे पहले आपको एक दो चीज़ें करनी चाहिए। एक तो आप कैम्स की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से एक कैपिटल गेन स्टेटमेंट पूरा का पूरा पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए अपना डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस फंड पे, इक्विटी पे, नॉन इक्विटी पे आपको कितना कैपिटल गेन है। वहीं पर साथ में जो इस पे आपको टैक्स के लिए जो आपको अपनी ITR में देना है, जो ITR 1 होता है नॉर्मली उसमें जो अगर खाली आपका इक्विटी फंड से कैपिटल गेन होता है 1.25 लाख तक का, तो हम रिपोर्ट कर पाते हैं, लेकिन जैसे कि आपके केस में है कि आपने एक लिक्विड फंड में किया था, वहाँ से कैपिटल गेन हुआ है एक नॉन इक्विटी फंड से, तो जहाँ तक कि मेरी जानकारी है आपको ITR 2 में उसको दिखाना पड़ेगा कैपिटल गेन्स के शेड्यूल में।

0: भले ही अमाउंट छोटा सा हो लेकिन उसको हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा और उस पर जो भी एप्लीकेबल टैक्स हो देना पड़ेगा। बाकी टैक्सेशन के लिए एक दफ़ा बेहतर रहेगा कि आप एक टैक्स एक्सपर्ट को भी कंसल्ट कर ले।
1: All right, and now let's ask Yashpal ji, what is his question? Yashpal ji, सवाल पूछें।
2: गुड इवनिंग मैम।
1: गुड इवनिंग।
2: एक्चुअली माय पोर्टफोलियो एंड द म्यूचुअल फंड इज वेल डाइवर्सिफाइड प्रेजेंटली, बट टू हैव मोर स्टेबिलिटी आई वांट टू गो फॉर प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम सम ऑफ द फंड्स वेयर द रिटर्न इज मोर देन 10% एंड टू इन्वेस्ट इन सम मोर स्टेबल फंड्स लाइक लिक्विड फंड्स, डेट फंड्स एंड इवन सिक्योर्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऑल्सो वेयर द इंटरेस्ट रेट इज अराउंड 11% विद A+ रेटिंग। So my time horizon is around 3 years and I'm 62 years old. Please advise which is better option. Thank you.
0: As far as I can understand, you plan to bring some kind of stability in your portfolio. Profit booking just because, you know, you have, crossed a certain threshold of the annual returns which was set in your mind would not be right, to be honest. However, what you should be doing is you should arrive at an asset allocation. At the age of 62, I believe, if this is a portfolio which you also use to derive income, the general equity allocation should be at least 30-40% of the complete portfolio. And if it is something that, this portfolio is not something on which you are dependent for deriving a regular income, then probably 50-70% can be very much in equity. So first you need to decide on the total asset allocation, and post that, you can transfer the money into the fixed income part. For fixed income, I would say if you have a horizon of 3-4 years, a good quality short duration debt fund would be the right choice. Liquid fund is something which can be opted for the expenses which are due within the next year. So, for goals which are falling in 1 year, maybe a liquid fund is fine. Otherwise, go for a short duration debt fund.
3: जी आकार, अभी एक श्रोता जो सवाल पूछ रहे थे हमारे कैपिटल गेन्स के बारे में,
0: हाँ जी,
3: वो हमारे कई श्रोताओं के लिए और हमारे लिए भी बहुत अभी चिंता का विषय बना रहता है जब हमें टैक्स फाइल करने का वक्त आता है तो
0: जी, जी।
3: और सबको लगता है कि भाई वो कैसे होगा, क्योंकि कुछ शॉर्ट टर्म हो सकता है, कुछ लॉन्ग टर्म हो सकता है, और कई दफ़ा होता है कि MF सेंट्रल से जो स्टेटमेंट आता है उसमें नहीं होता। क्या हम इसको अलग अलग जो जहां से हमने डाला हुआ है जिन म्यूचुअल फंड्स में, उन कंपनियों की जो वेबसाइट है अपनी, उन पर भी जाकर ले सकते हैं हम?
0: जी जी बिल्कुल,
3: वो ज्यादा डिटेल में शायद आता है और हर किसी का अलग अलग आता है उसमें। इसमें एक साथ मिल जाता है आपको म्यूचुअल फंड,
0: हाँ जी,
3: हाँ, सेंट्रल में,
0: हाँ जी हाँ जी। बल्कि अगर आप कैंप्स पे जाएंगे तो कैंप्स पे जाने से सहूलियत ये हो जाती है कि आपको अपने जो भी आपके अक्रॉस द फंड हाउसेज गेन्स है वो सब आपको एक जगह मिल जाते हैं एक स्टेटमेंट में। बट वहीं अगर मान लीजिए अगर किसी ने कुछ 10 फंड हाउसेज के अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट किया है और वो हर फंड हाउस की वेबसाइट पे जाएगा तो उसको 10 तरीके के स्टेटमेंट निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे सारे के सारे एक ही जगह मिल जाएंगे और वहाँ पे पूरा का पूरा मेंशन्ड होता है कि कितना इक्विटी फंड्स में है, कितना नॉन इक्विटी फंड्स में। आप चाहे तो उसको एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और रिटर्न भरते हो अगर आप खुद जैसे जब रिटर्न भरेंगे तो फिर एक्सेल वाला फॉर्मेट थोड़ा सा ज़्यादा सहायता पूर्वक रहता है, वहाँ पर आप कैलकुलेशन ईजिली कर पाते हैं।
3: जी, और अब पहली खबर पे हम नज़र डालें आज की कि FPIs का रुख बदला है। लगातार 4 महीने तक बिकवाली का दबाव बनाए रखने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPIs ने जुलाई में रुख बदला और इस महीने अब तक उन्होंने भारतीय शेयर बाज़ार में 15,157 करोड़ रुपए का निवेश किया है। सेमीकंडक्टर्स के वैश्विक व्यापार में कमजोरी से FPIs अब फिर से उभरते हुए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। देश के बेहतर आर्थिक संकेतकों, कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता और तिमाही आमदनी की अच्छी खबरों से विदेशी निवेशकों में उत्साह रहा है। सरकार की टैक्स नीति में बदलाव के बाद विदेशी निवेशकों ने भारतीय ऋण बाजार में लगातार दिलचस्पी दिखाई है। जुलाई में अब तक उन्होंने FAR के जरिए 6,625 करोड़ रुपए और जनरल रूट से 3,228 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
1: एंड लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर रवि फ्रॉम दिल्ली। रवि जी सवाल पूछे।
4: मंत्री मंत्रा जी नमस्कार, ये मेरा पहला सवाल है। जैसे मैं 10,000 रुपये मंथली SIP चला रहा हूँ तो इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, और दूसरा मेरा सवाल जो ईरान

0: और मैंने कहा था ये हॉर्मोन्स बंद हो गया तो मार्केट गिरने की संभावना है या नहीं।
1: ये बहुत अहम सवाल है जो कई लोगों को ये गलतफहमी या खुशफहमी रहती है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट।
2: जी जी बिल्कुल रवि जी, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कंपाउंडिंग बिल्कुल मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो कंपाउंडिंग मिलने का तरीका है वो एक नॉर्मल एफडी से थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए अगर एकदम सरल भाषा में बात की जाए तो कंपाउंडिंग का मतलब होता है आपके इंटरेस्ट या रिटर्न के ऊपर इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, रिटर्न मिल रहा है तो रिटर्न के ऊपर रिटर्न। एफडी में अगर आपने देखा होगा तो आमतौर पे ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए अगर 1,00,000 रुपए की एफडी की और मैच्योरिटी पे उसमें 10,000 इंटरेस्ट मिला तो अगली बार आपको 1,10,000 पे इंटरेस्ट मिलता है, तो वो हो जाता है कंपाउंडिंग। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि जो भी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो आपको रोज के रोज आपके एनएवी से डिसाइड होती है, एक एनएवी डिक्लेयर की जाती है जो कि आपके अंडरलाइंग असेट्स की वैल्यू होती है, और यहाँ पे उस एनएवी के थ्रू अंदर ही अंदर जिस तरीके से वो कंपनीज की ग्रोथ हो रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ हो रही है तो वो वहीं के वहीं कंपाउंड होता रहता है। तो यहाँ पे आपको एफडीज के तरह एक अलग से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपके कोई खाते में एक अलग से नहीं आएगा, लेकिन वो जो एनएवी है वही आपकी कंपाउंड होती रहेगी। तो वो टाइम बाय टाइम आप देखेंगे तो आपको जो एक टोटल मुनाफा होता है वो ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करती है बट बेनिफिट वही मिलेगा।
1: जी, और किसी भी सूरत में ये इंटरेस्ट नहीं है।
2: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इंटरेस्ट नहीं है
1: जी।
2: और एक दूसरा सवाल था आपका कि अभी जो ईरान में टेंशन चल रही है, वेस्ट एशिया में टेंशन चल रही है, तो अभी मार्केट गिरेगा कि नहीं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मार्केट एकदम आगे आने वाले समय में कैसा होगा वो मैं क्या आपको कोई भी बहुत ही श्योरिटी से नहीं बता सकता, क्योंकि वो किसी के हाथ में नहीं है। बट हाँ, इसमें कोई शंका नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से मार्केट चल रहा है और जिस तरीके से अभी टेंशन चल रही है, आने वाले कुछ करीबी समय में मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल ज़रूर रहेगा। बट एज एन इन्वेस्टर आपको एकदम जब भी इक्विटी में निवेश करें तो एकदम आने वाले एकदम पास के समय के लिए मत करें और ना ही उसकी चिंता लीजिए। आप बस एक डिसिप्लिन तरीके से, आपने एक SIP चालू करी हुई है, आप मैं मानता हूँ आपने ज़रूर एक अच्छे फंड में निवेश किया होगा, आप बस पूरे दिल से बिना घबराए हर महीने डिसिप्लिन से उसमें निवेश करते रहिए और अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 साल रखिए, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
1: जी, अगले कॉलर हैं कर्नाटक से वीरेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
3: गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम।
1: गुड इवनिंग
3: आकार जी, आई वांट इन्वेस्ट 4,00,000 रुपीस फॉर अबाउट 6 months टू 1 year, व्हिच फंड शुड आई इन्वेस्ट फॉर लमसम?
2: वीरेंद्र जी, योर होराइजन इज 6 months टू 1 year, सो आई वुड से यू शुड डेफिनेटली नॉट गो बियॉन्ड अ लिक्विड फंड व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड्स। सो फॉर सच अ शॉर्ट ड्यूरेशन लिक्विड फंड वुड बी अ ग्रेट चॉइस। व्हाइल चूजिंग अ लिक्विड फंड व्हाट यू शुड बी लुकिंग एट इज द एक्सपेंस रेशियो, डेफिनेटली लोअर द बेटर, बिकॉज देयर वोंट बी ह्यूज डिफरेंस इन रिटर्न्स व्हेन इट कम्स टू लिक्विड फंड्स। इनफैक्ट इफ यू सी अ लिक्विड फंड विद you know unusually high return than others, then you should not be opting for it, because while investing in fixed income the main objective should not be to optimize or to maximize your profit or returns, but rather it should be to you know bring stability and preserve your capital. Alternatively, you can very well go for a fixed deposit for such a short period of time, because when it comes to the taxation, both are on the same level now. But yes, there will be definitely more liquidity and flexibility in mutual funds, because you would not have to commit to a fixed time period, which would be the case in a fixed deposit. And in case if you go for a fixed deposit, say commit a time period and then happen to withdraw it before that, you'll have to pay penalty on the interest amount. So if you want to go for liquidity and flexibility, opt for a liquid mutual fund for this duration.
4: All right, let's ask Yogesh ji, what is his query? Yogesh ji, सवाल पूछें।
5: जी नमस्कार आप सभी को, मेरा सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड सेंट्रल MF सेंट्रल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अभी लॉग इन करके पोर्टफोलियो देखने के लिए, MF सेंट्रल का। MF सेंट्रल में एक फीचर आया है जब भी लॉग इन करते हैं कि वॉलेंटरी लॉक इन, तो म्यूचुअल फंड यूनिट को वॉलेंटरी हम लोग एक्स्ट्रा लॉक पे लगा सकते हैं ताकि रिडीम करना उसको मुश्किल हो पाए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए। ये कितना कारगर है और क्या ये AMC लेवल पे भी काम करता है, सिर्फ MF सेंट्रल का अपना फीचर है?
2: नहीं, अभी सेबी द्वारा कुछ टाइम पहले डायरेक्टिव आया था कि अगर आप चाहे तो एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए लॉक इन लगा सकते हैं, जो बेसिकली साइबर फ्रॉड्स होते हैं, कुछ और तरीके के जो इंटरनेट फिशिंग अटैक्स वगैरह होते हैं, कुछ फ्रॉड्स होते हैं, उनके लिए एक ये स्टेप अहेड है, डेफिनेटली एक एडेड फीचर है, एक एडेड सिक्योरिटी है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, एक वहाँ से लॉक इन लगा सकते हैं, बट फिर जब भी आपको रिडिम्शन करना होगा आपको उससे पहले एक दफ़ा ये लॉक इन खुद हटाना पड़ेगा।
1: जी, अगले कॉलर है राजस्थान से राजेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
6: नमस्ते सर, मैं राजेश कुमार गुप्ता कोटा राजस्थान से बोल रहा था।
1: जी
6: सर, वो मैंने कोटक की एलएसएस टैक्स सेवर फंड में निवेश किया हुआ है, तो सर अब इसमें रिडक्शन का क्या नजरिया रहेगा सर, क्योंकि मार्केट कभी भी स्थिर नहीं रहता, कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो इसमें जो टैक्स सेवर फंड है सर, इसमें रिडक्शन का कितना अमाउंट निकाल सकते हैं या क्या उचित रहेगा सर?
2: राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो टैक्स सेवर फंड है, जो ELSS फंड है, इसमें आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक्ड इन है, तो जिस भी तारीख को आपने पैसा इसमें निवेश किया होगा तब से लेकर के अगले 3 साल से पहले आप रिडीम नहीं कर सकते। अगर आपने लमसम किया होगा तो, और अगर आपने SIP के द्वारा निवेश किया होगा तो हर SIP इंस्टॉलमेंट की डेट से उस पार्ट के लिए 3 साल वहीं से काउंट होंगे, तो कम से कम सबसे पहले तो रिडिम्शन के लिए 3 साल का पीरियड होना चाहिए। उसके अलावा देखिए, जो ये फंड है ये एक अच्छा फंड है, एक एवरेज फंड है, एक प्योर इक्विटी फंड है, जो सारे ELSS फंड्स होते। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहूँगा, आपने कहा कि इस वक्त मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं है, कभी नीचे कभी ऊपर, इक्विटीज़ उसी तरीके से होती है जो मार्केट है उसी तरीके से होता है। शॉर्ट टर्म में अगर आप कभी भी मार्केट देखेंगे इतिहास में उठा करके, तो शॉर्ट पीरियड में हमेशा ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन अगर आप वहीं पे एक लंबे समय का उठा करके देखेंगे, 10 साल पहले का उठा करके देखेंगे कि 10 साल पहले मार्केट कहाँ था और आज कहाँ पर है, तो आपको आइडिया लगेगा कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो इसमें अगर आपको ज़रूरत है, आप रिडीम करना चाहते हैं, तो मिनिमम 3 साल के बाद आप रिडीम कर सकते हैं। जिस तारीख पे आप रिडीम करेंगे उस दिन जो NAV होगी उसके हिसाब से और जो आपके यूनिट्स है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका जो वैल्यू आएगा उतना पैसा आपको मिलेगा।
4: All right, Akar, we'll continue with the discussions, but first let's take a look at the next big story of the day. Iran's Revolutionary Guard said it had closed the Strait of Hormuz until further notice and warned of further action if US strikes continued. The United States launched fresh airstrikes on Iran this morning. The airstrikes came after Tehran attacked a commercial vessel in the Strait of Hormuz, setting it ablaze and forcing its crew to abandon ship. US Central Command said it targeted around 140 Iranian military sites, including missile, drone, and communications facilities. Iran retaliated with missile and drone attacks targeting Bahrain, Kuwait, Qatar, and the United Arab Emirates. Qatar and Kuwait said they intercepted the incoming projectiles, while Bahrain also activated missile alerts. Iran also claimed to have carried out strikes on a US military base in Jordan.
1: अगले कॉलर हैं दिल्ली से रमेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
7: सर जी नमस्कार।
1: नमस्कार
7: सर, मैं 70 ईयर ओल्ड सर, मेरी 70 साल सर मेरी उम्र है सर, मैंने कभी म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाया सर, मेरे काफी दोस्त मुझे कहते रहते हैं लगाने करो, तो थोड़ा थोड़ा सर गाइड करा सकते हैं सर, कैसे लगाएं, किस पर लगाएं सर, बता सकते हैं प्लीज?
2: जी जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड में जैसे कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं, तो जैसे कि अभी हम कुछ एक दो कॉल्स पहले बात कर रहे थे, उसके लिए होराइजन थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। इक्विटीज़ में निवेश करने के लिए आपका होराइजन कम से कम 5 साल का होना चाहिए, और वहीं पर मैं समझता हूँ कि इवन एट द एज ऑफ 70 एक रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि इक्विटी में निवेश ना करें, बट वो सही नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी बहुत अहम है, अगर लंबे समय के लिए जैसे जो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स चाहिए उसके लिए इक्विटी बहुत अहम है। तो शुरुआती तौर पे मैं कहूँगा कि आप बहुत थोड़ा सा पोर्शन लीजिए और किसी भी एक प्लेन इंडेक्स फंड से शुरुआत कीजिए। एक सेंसेक्स का फंड आप ले सकते हैं या फिर आप एक निफ्टी का फंड ले सकते हैं, ये बहुत ही लो रिस्क इक्विटी फंड्स होंगे इन कंपैरिजन टू अदर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे फंड मैनेजर्स खुद पैसा मैनेज करते हैं। ये वाले इंडेक्स फंड्स केवल और केवल मार्केट को रेप्लिकेट करेंगे।

0: मार्केट नीचे गिर गया तो वो एक साथ पूरा पैसा नीचे आते हुए बहुत ज़्यादा एक इन्वेस्टर को एंग्जाइटी हो जाती है। तो बजाय उसके अगर हम लोग तोड़ तोड़ के कुछ महीनों में स्प्रेड करके एक SIP के जरिए इन्वेस्ट करते हैं तो जो हमारा परचेज कॉस्ट है वो एक एवरेज आउट हो जाता है और उससे ये वाला जो रिस्क होता है ये काफ़ी कम हो जाता है। तो अगर एकदम मैं संक्षिप्त में बोलूं तो फिर आप एक सिंपल इंडेक्स फंड से शुरुआत कीजिए, SIP के जरिए कीजिए और थोड़ा सा पैसा पहले निवेश करके देखिए।
1: ऑल राइट, लेट्स आस्क शंकर फ्रॉम भोपाल व्हाट हिज क्वेरी इज। शंकर जी सवाल पूछें।
2: नमस्ते सर, आकाश जी नमस्ते।
0: नमस्कार
2: सर, मेरा सवाल है, देयर इज ह्यूज फंड्स कमिंग इनटू इक्विटी फंड में आ रहा है इंडिया में म्यूचुअल फंड के थ्रू, जो पहले नहीं होता था। तो इसका लॉन्ग पहले क्या था, छोटे छोटे थोड़ा बहुत इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड तो आते, लेकिन अभी हर कोई आने लगा है। इसका प्रभाव हमारे मार्केट में और रिटर्न पे क्या पड़ेगा, कि क्या अब हर कोई चीज महंगी होती जाएगी? जैसे अमेरिका में हुआ, बिकॉज अमेरिका इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग गेटिंग फंड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इन देयर मार्केट S&P एंड NASDAQ, एंड दे आर सीइंग गोइंग थ्रू रूफ। सो दिस इज सेम थिंग ट्रेंड इज गोइंग टू कंटिन्यू, और देयर इज एक्चुअली गोइंग टू बी एन इफेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी ऑन द इट्स वैल्यू। एंड
0: I would say a huge amount of money coming into mutual funds is one of the function of the increasing awareness. So over the last few years there has been a great awareness equity mein kyun paisa invest karna chahiye and kya benefit hota hai, log uske bare mein zyada zyada jaan rahe hain aur bahut zyada easy hota ja raha hai invest karna. Mobile phone se kuch buttons ke through, kuch apps ke through aap invest kar sakte hain, but wahin par jo sare mutual fund companies hai wo bhi bahut tarike ke products leke aa rahe hain. To isse I don't see a problem ki kuch kisi tarike की दिक्कत होनी चाहिए इन्वेस्टर के लिए। इनफैक्ट इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट और अच्छा हो रहा है, उनको कहीं तरह के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनको देखने के लिए, बट वहीं पर उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो रहा है कि उनको प्रोडक्ट चूज करना पड़ता है कि किस तरीके के फंड में निवेश किया जाए, बट अदरवाइज एज सच कुछ उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
3: और देखते हैं अब सोने और चांदी का हाल। इस हफ्ते सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। MCX में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 2.6% की गिरावट आई और ये 1,43,478 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 6.2% गिरकर 2,22,664 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। कॉमेक्स में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 0.3% की गिरावट आई और ये $4,113.70 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ। इसी दौरान सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा लगभग 1.5% गिरकर $60.16 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुई।
1: और दिल्ली से केशव जी जुड़ चुके हैं। केशव जी सवाल पूछें।
4: हाँ जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ सबको कि जैसे कि जो आप यूडिफ के बारे में बताते हैं, अगर किसी ने यूडिफ ले भी लिया हो तो उसमें से बाहर निकलना कितना, किस तरह से निकला जाए अगर उसने ले भी लिया तो, यूडिफ में क्या क्या नुकसान होते हैं? और दूसरा, एक एजेंट से हमारी मीटिंग हुई थी, एजेंट ने हमें कुछ अपने अपने तरीके से अपने ही तरीके की कंपनियों में बात में बताई, तो हमें एजेंट से बात करने के में भी क्या सावधानी रखनी चाहिए? जो हमें नया स्रोता है, नया उपभोक्ता है जो उसमें अपना जाना चाहते हैं चल रहे।
0: केशव जी, जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, यूलिप्स में सबसे पहले तो 5 साल तक का लॉक इन पीरियड होता है कि जो पैसा आप उसमें निवेश कर चुके हैं उसके बाद नहीं निकला जा सकता। बट हाँ, आपके पास एक ऑप्शन ज़रूर है कि आप आगे आने वाले प्रीमियम्स जो है उसमें आप ना दें, और बल्कि अगर आप जाके एक इंश्योरेंस कंपनी में रिक्वेस्ट करेंगे, वहाँ पर अपना फॉर्म देंगे, तो फिर जो आपका फंड में पैसा है, अगर भले ही लॉक इन भी पीरियड में भी होगा, वो उसको उठा करके एक सरेंडर पोर्टफोलियो उनका होता है वहाँ पर डाल देंगे, जिसमें कि आपको इंटरेस्ट काफ़ी कम मिलेगा लेकिन आपका पैसा वहाँ से निकला रहेगा और आगे आने वाले प्रीमियम आपके जो आप भरेंगे वो बंद हो जाएंगे। आमतौर पे यूलिप इसलिए अच्छा नहीं रहता क्योंकि एक यूलिप जो है हाइब्रिड प्रोडक्ट होते हैं, ये क्लेम करते हैं कि आपको इंश्योरेंस भी देगा, इन्वेस्टमेंट भी देगा, लेकिन आमतौर पे ये दोनों में ही सक्षम नहीं उठ पाता। इंश्योरेंस के लिए जो एक कवर देता है ये बहुत ही कम देता है। एक यूलिप यूजली जो आपका एक एनुअल प्रीमियम होता है उसका 10 times का कवर देता है, यानी कि अगर आप 1,00,000 रुपये भरेंगे तो ये आपको 10 lakh का लाइफ कवर देगा, जो कि आमतौर पर काफ़ी कम रहता है। वहीं पर एक प्योर टर्म प्लान लिया जाए तो 1 crore का कवर

0: कुछ अराउंड 12,000 से 15,000 रुपये सालाना में मिल जाता है। और बात करें इसके इन्वेस्टमेंट पोर्शन की, तो उसके हिसाब से ये काफ़ी एक महंगा प्रोडक्ट रहता है। इसके बाद वहीं पर एक आपका सवाल था कि एजेंट से किस तरीके से डील की जाए। सो देखिए, वहाँ पे मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो मुझे सही लगता है कि आप उनसे क्वेश्चंस पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछिए, हर चीज़ के जो रिवॉर्ड्स है उसके बजाय उसका रिस्क जानिए और फिर डिसीजन लीजिए।
1: All right, let's take a look at how our markets are expected to show up next week. The domestic markets are expected to take cues from the first quarter corporate earnings results, geopolitical developments, commodity prices, foreign investor activity, progress in monsoon and currency trends in this week. Market participants will closely track key economic indicators, including retail and wholesale inflation data, import-export figures and employment data. Meanwhile, the primary market is set to remain active this week with two upcoming main board IPOs. SBI Funds Management Limited and Alpine Tex World Limited are scheduled to launch their public issues on July 14, with the bidding window closing on July the 16th. Globally, investors will closely monitor geopolitical developments surrounding the West Asia conflict, US consumer price data index, the South Korean Central Bank's interest rate decision and the OPEC monthly oil market report.
2: हाँ, काफी गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। आकार, कुछ कहना चाहेंगे आप इस पे?
0: देखिए, इस वक्त जब बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अपने जो फाइनेंशियल प्लान है, जो एक इन्वेस्टमेंट प्लान है इन्वेस्टर के लिए, उस पर टिके रहिए और डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करें, पैनिक ना करें।
2: जी, अगर आज वक्त इतना ही है, कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद।
1: Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. Foreign portfolio investors turn net buyers after 4 months, infuse more than 15,000 crore rupees into Indian equities so far in July. Situation in West Asia intensifies as Iran once again shuts the Strait of Hormuz in response to United States' fresh airstrikes. And domestic investors to focus on macroeconomic data, first quarter corporate earnings results and geopolitical developments for Q next week. That's all in today's edition. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है। भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि ये अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। उसने दोहराया है कि वे इसे ना तो स्वीकार करता है और ना ही मान्यता देता है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। ये हमले हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए।

0: अमरीकी सेंट्रल कमान ने बताया है कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के अंतर्गत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 7 विकेट पर 303 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी के आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स फाइनल में चीन की गुओ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मलाडोनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रिएला डाब्रोव्स्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी से जारी है। हान्यू और मलाडोनोविक ने पहला सेट 6-3 से जीत लिया है। पुरुष सिंगल्स का फाइनल इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: বৈঠকে জাতীয় শিক্ষানীতি সহ রাজ্যের শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হবে। রাজ্যের মাদ্রাসাগুলির পরিকাঠামো ও পঠন পাঠনের বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর 18 সদস্যের একটি কমিটি তৈরি করেছে। কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, দুই মেদিনীপুর, নদিয়া, হুগলি, হাওড়া ও দুই চব্বিশ পরগনার মাদ্রাসাগুলির অবস্থা, পরিকাঠামো, পঠন পাঠন, পাঠ্যক্রম ও নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন বিষয় এই কমিটি খতিয়ে দেখবে। 15 জুলাই থেকে কাজ শুরু করবে এই কমিটি। 21 জুলাই এর মধ্যে কমিটিকে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের ওপর অবস্থিত সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও সন্নিহিত বাংলাদেশের ওপর একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করায় সারা রাজ্যেই এখন বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ। আগামীকাল থেকে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের বিজ্ঞানী ডক্টর সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় আকাশবাণীকে জানিয়েছেন।
1: 13 তারিখে দক্ষিণবঙ্গের বৃষ্টিপাত বাড়বে। মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, উত্তর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং সেই সাথে কলকাতা, এই জেলাগুলো বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে এবং দু এক জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে এই জেলাগুলোতে। উত্তরবঙ্গের সব জেলাগুলোতেই ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকবে।
0: বৃহস্পতিবার থেকে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। উত্তরবঙ্গের হিমালয় সন্নিহিত 5 জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল আজ জয় দিয়ে কলকাতা প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে তাদের অভিযান শুরু করেছে। নিজেদের মাঠে ইস্টবেঙ্গল 3-0 গোলে জর্জ টেলিগ্রাফকে হারিয়ে দেয়। ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে জেসিন টিকে, জোসেফ জাস্টিন ও মোহাম্মদ বেলাল গোল করেন। উল্লেখ্য, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী ডাক্তার ইন্দ্রনীল খা, সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে প্রমুখ। মোহনবাগান সুপারজায়েন্ট আগামীকাল এবারের প্রিমিয়ার লিগে তাদের প্রথম ম্যাচে পাঠচক্রের বিরুদ্ধে খেলবে। খেলা শুরু হবে বিকেল 4:30। শেষ করার আগে স্থানীয় সংবাদের বিশেষ কিছু অংশ আরও একবার। পশ্চিমবঙ্গ জননিরাপত্তা ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ আইন 2026 আগামীকাল থেকে রাজ্যে কার্যকর হচ্ছে। রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগ ও জমি নীতি নিয়ে আলোচনা করতে শিল্পমন্ত্রীর নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগোষ্ঠী আগামীকাল বৈঠকে বসবে। উত্তরবঙ্গে বন্ধ চা বাগানগুলির ভবিষ্যৎ এবং শ্রমিক সমস্যা নিয়ে আজ উত্তরকন্যায় উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বাগানগুলি খোলার বিষয়ে আলোচনা হয়। স্থানীয় সংবাদ শেষ।
2: নমস্কার, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है। भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रखे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों में संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि यह अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। उसने दोहराया है कि वो इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। अमरीका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमान ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाने बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
3: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
2: सहकारिता मंत्री अमित शाह कल गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वो एक पेड़ माह के नाम अभियान के अंतर्गत एक पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देशभर में लगभग 668 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 7 विकेट पर 341 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चीन की गुआ हानयू और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लाडेनोविक की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीत लिया है। पुरुष सिंगल्स का फाइनल आज इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच होगा। मैच 8:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The Indian Embassy in Vietnam today informed that the mortal remains of the 15 Indian nationals who lost their lives in yesterday's boat capsize near Phu Quoc Island in Vietnam have been transported to Ho Chi Minh City in Vietnam. In a social media post, the embassy said that after the completion of necessary formalities there, the mortal remains will be transported to India at the earliest. It added that the embassy and the consulate general are closely coordinating with the Vietnamese authorities and assured all possible assistance to facilitate the early transportation of the mortal remains to India. India has condemned the attack on the commercial vessel GFS Galaxy off the coast of Oman today. The External Affairs Ministry informed in a statement that out of 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one Indian national is reportedly missing. It said the Indian Embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. India has thanked the Omani authorities for their support. New Delhi has expressed concern over the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region. It reiterated the call for immediate de-escalation of tensions and the conclusion of ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani on the 26th of this month. It will be the 136th episode of the monthly radio program. People can submit their ideas and suggestions for the program through the toll-free number 1-800-117800. They can also share their input online via the Narendra Modi app or the MyGov open forum. The citizens can also give a missed call on 1922 and follow the link received in SMS to directly give their suggestions to the Prime Minister. Suggestions for the upcoming episode will be accepted until the 24th of this month. Vice President C.P. Radhakrishnan today asserted that it is the duty of every citizen to respect and uphold the great legacy of the nation's social reformers. Mr. Radhakrishnan was speaking after unveiling the statue of social reformer and freedom fighter Mannathu Padmanabhan and inaugurating the

0: चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का होर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फुक्वाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
1: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
2: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। ये अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
3: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1 करोड़ 25 लाख

0: दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
1: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेले जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुआओ हान्यू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील हैं। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देश भर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा, ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या माई गॉव ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन

अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देश भर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा, होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरो मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुज जल डमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जल डमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फू क्वोक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के आउटडोर्स में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडोमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। देशभर में पौधे लगाने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने के लिए प्रति चिंतित है।
2: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर GDP में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। ये आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आज से कर रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉन्राड संगमा इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने चीन के ओरडोस में खेली जा रही एशियाई अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने कल अंतिम दिन 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।